0: सुबह रात में आपकी जरूरत है।
1: क्या है रात में? क्या
0: वो जासूस जिसने रानिया को तबाह किया?
2: सर दो दिन की छुट्टी मना रहा था
0: अभी।